वेखो तुसी साका जल्ले आदे बागदा होया सी जुल्मे उठे खूनी रागदा ऊदम जहे जोदे उड़वारा।

0: दूसरी
1: बिल्कुल
0: गल, बच्चा ये सोच के कदे नहीं पढ़ेगा कि मेरे माँ बाप लिए मैं पढ़ना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जब उन्हें ये लगेगा कि मैं अपने लिए पढ़ना है
1: जी
0: उदों वो
1: जी
0: पढ़ेगा।
1: उदों उदी रुचि आएगी तो उदों ही वो
0: हाँ
1: अगे चलेगा। बिल्कुल
0: हुण मैं इस केस नू बहुत लंबा मतलब फॉलो किया
1: जी
0: और मैं ये पाया कि पेरेंटिंग दे विच बहुत प्रॉब्लम्स है।
1: जी
0: उन्हें सारा दिन 1 घंटा लैक्चर देंदे है,
1: जी ब्रेन वॉश हो रहा उदा।
0: उदा वो ही चीज़ा रिपीट होंदिया, वो बच्चा फेड अप हो गया।
1: जी
0: वो
1: जी
0: कहंदा नहीं पढ़ना,
1: बिल्कुल
0: मैं हुण पढ़ना ही नहीं, मैं तो ये कर नहीं सकता जो तुसी कह रहे हो,
1: बिल्कुल ठीक
0: मैं तो
1: है
0: हुण पढ़ना ही नहीं।
1: जी जी जी बिल्कुल ठीक है
0: जो बच्चा साढ़े नाल गल करता है
1: जी जी
0: असि उन्हें मोटिवेट करते हैं,
1: जी
0: असि उन्हें ये कहने हैं कि तू 10वीं किसी तरीके नाल कर लिया, उस तो बाद तू जो करना चाहना तेन ऑप्शन मिलनगियां।
1: जी
0: साडा सिस्टम इदा है कि 10वीं तक तुसी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं,
1: पढ़ने
0: पैने हैं
1: बिल्कुल,
0: बट उस तो बाद ऑप्शन है, फिर तू वो करें जो तेरा दिल करता है। ठीक है, वह मोटिवेट होंगे, वह खुशी खुशी घर जाता है, वह घर जाता है उन्होंने फिर वही
1: फिर लैक्चर शुरू हो जाता है, पुरानी गल जी सीढ़ी पै जाती है वही।
0: हाँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये एक जो है फोर्स्ड कह लो उन्होंने उत्ते किया जाता है, जो अपने
0: हाँ जी
1: थोपिया जाता है उन्होंने
0: थोपिया
1: अपनी पंड
0: जाता है।
1: चुका है। कई बार ये होंगे कि माता पिता जो नहीं बन सके जीवन च बनना चाहते, जो चाहते ही
0: बिल्कुल
1: बच्चा बने वो
0: बिल्कुल
1: घट्टो घट वो तो बने,
0: अपनी उम्मीदा का भार लद दें बच्चों से।
1: हाँ जी हाँ जी
0: बच्चे एक इंडिविजुअल एंटाइटी है,
1: जी जी
0: थोनों यह मनना पेगा वो थोड़े तो बच्चे है ठीक है, पर वो एक वक्रा ह्यूमन बीइंग भी है
1: बिल्कुल
0: जिसे डिजाइनिंग कुछ डिफरेंट है थोड़े नालों।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी ये तो मन के चलना पैना।
0: हाँ
1: जे जिनी देर तक ये गल नहीं आएगी।
0: हाँ जी
1: ते एक होर जो आप कहने ना बल्दी ते तेल पै जाता है, ते आम मैं कई बार बच्चों नूं मिलता है जां घरां विच आम आप देखते हैं, एक सब तो बड़ा डायलॉग हुंदा है माता पिता का कि लोगों के बच्चे नूं देखो।
0: हाँ जी कंपैरिजन
1: कंपैरिजन ये कितना कि जरूरी है।
0: बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल अनहेल्दी है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए लोगों के बच्चे की भैन भरावां नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी
0: ठीक है, जैलसी डिवेलप होंगी है। ठीक है कई बार वो तुहाडा कोई बहुत अच्छा फ्रेंड होंगे बार बार उसकी एग्जाम्पल तुहानू दित्ती है, तुहानू उस तो चिढ़ाउण लग जाती है कि जदों देखो यह इदां करदा तां मेरे नाल इदां हुंदी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तुसीं उस दीआं अचीवमेंट्स ते खुश नहीं होंदे,
1: बिल्कुल
0: तुसीं जैलस होना सीख जांदे हो,
1: वो एक तरह की गिरावट आनी शुरू हो जांदी है, नेगेटिविटी जिहड़ी है।
0: हाँ जी
1: लेकिन ये बहुत ही व्यापक है,
0: बहुत व्यापक है क्योंकि रीस करने की आदत है सानू।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी
0: असि वही चीज अगे इनकलकेट करते हैं।
1: जी जी बिल्कुल,
0: बच्चों शुरू शुरू के सारे प्रॉब्लम होंगी है जो उन्होंने किसी नाल कंपेयर किया जाता है, शुरू शुरू के कहते भी है कि साढ़े नाल इदा ना करो, पर क्योंकि पेरेंट्स नहीं हटते क्योंकि उन्होंने डराया धमकाया जाता है और इसनों डिसोबीडियंस मनिया जाता है, बच्चों की हौली हौली फाइन ट्यूनिंग हो जाती है और अल्टीमेटली वो ही करन लग जाते हैं।
1: कई बार ये भी तो हो सकता है कि जो बच्चा देखे कि चलो हूँ मैं उन्होंने बच्चा वर्गा नहीं है जी छो परे,
0: हाँ जी
1: तो वो जो अपने राह तो भी उतर जाता है।
0: बिल्कुल उतरद मैं हूँ ही थोड़ा जी एग्जाम्पल दी
1: ये तो कुछ हो रहा है।
0: बिल्कुल हो रहा है
1: बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये जी अजक जे मापे आ जी हूँ जनरेशन चल रही है अजक वट्सएप का इंटरनेट का जमाना है, जेडे हूँ माता पिता ने ये बहुत ओवर बिजी ने।
0: हाँ जी
1: तो पहला वाले भी बिजी से वो अपना चलो कम कार विहार करते सके, पहला तो हूँ कि जो फर्क वेखते हो।
0: बहुत फर्क है देखो इन्ना टेक्नोलॉजी एडवांस है सब कुछ है
1: जी जी।
0: एक तरह नाल देखा जाए तो अगर तुसी सोशल मीडिया से एक्टिव हो तो थोड़ा इस तरह टाइम बचता है कि तुहानू जाके नहीं मिलना पैंदा, तुसी घरे ही सारिया नू हैलो हाय एक बारी सवेरे करके निपट जांदे हो।
1: ओ एक केड़ा वादा है।
0: हाँ वो इहदा वादा है जे इसनू पॉजिटिवली लो
1: जी जी।
0: लेकिन अगर तुसी पिंग होई नाल दी नाल फोन चुकिया सारे काम छड़ के तुसी मैसेज देखिया फटाफट नहीं, एक चीज का टाइम होना चाहिए कि ये टाइम है मेरा
1: जी जी
0: इस टाइम जिदा बच्चे स्कूल गए है या ट्यूशन गए है,
1: ये
0: मैं हुण घर दे काम तो फ्री है, ये 1 घंटा मैं इतने लगा सकती हाँ, प्रायोरिटी देनी पेगी थोनू तुसी सैट करना है कि तुहाडे लई प्रायोरिटी की है। जे तुहाडे लई प्रायोरिटी सोशलाइज करना है
1: जी,
0: मार्केट जाना है सहेलियां नू मिलना है, तो फिर तुसी बच्चियां तो ये एक्सपैक्ट ना करो कि उन्हां लई पढ़ाई और जो तुसी कहने वो प्रायोरिटी होवे, क्योंकि तुसी अपने बच्चों के रोल मॉडल हो, बच्चा जो देखता वही करता है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
0: जे तुहाडे लई हमेशा तुसी उनू ये कहने हो नहीं इत्थे तो जाना ही पैना है, नहीं हुणे आए आ हुण तुसी इन्हां नू अटेंड करो, वो यही सीखेगा कि पढ़ाई पिछे पाई जा सकती है।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल
0: जे तुसी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस उन्हां दी पढ़ाई लई छड़ दे हो वो सीखेगा कि पढ़ाई ही प्रायोरिटी है,
1: वो स्किपिंग करेगा नहीं ते
0: हाँ
1: वो कहेगा छड्डो परे।

आखदे ने लोक ही काठो कहानियां हड़ एकता दा केड़ा सके रो कहानियां हड़ एकता दा केड़ा सके रो कहानियां हड़ एकता दा बन के कटामा असी धरती बसना है बन के कटामा असी धरती बसना है धोवांगे गवार जेड़े बिच पौण दे सिर बढ़ने ने सिर बढ़ने ने बीमी सदी दे रोण दे सिर बढ़ने ने सिर बढ़ने ने बीमी सदी दे रोण दे सिर बढ़ने ने बेलड़ा ने मान

रख दे ख्याल पूरा सिरी ते कमीन दा, रख दे ख्याल पूरा सिरी ते कमीन दा, कातों है नी

अति रात तक करना आंदा, अति रात तक करना आंदा, सप्पा दियां सिरियां नप के सौंदा, अति रात तक करना आंदा, सप्पा दियां सिरियां नप के सौंदा। अच हंजू केर रोवे, अच हंजू केर रोवे, अन्न दाता संसार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा। तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो, तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो। किंज पैने फिर कित्ते भंगड़े, किंज पैने फिर कित्ते भंगड़े, की मतलब हो विसाखी दा, किंज रुआब हंडाउणा दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा, किंज रुआब हंडाउणा दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा। वास्ता पंजाबीओ, वास्ता पंजाबीओ, मां धरती दे दुलार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा। बस करो हुण होर नी सहना, बस करो हुण होर नी सहना, भगत सिंह वर्गे बनना पैना, बस करो हुण होर नी सहना, भगत सिंह वर्गे बनना पैना, इनकलाब ते फिर तो लियाना पैना, इनकलाब दा पुत्तरो लियाना पैना। सच कहंदे ने सियाने झट आई उत्ते आया, सच कहंदे ने सियाने जे झट आई उत्ते आया, सच कहंदे ने सियाने भुखे रोणगे न्याणे, सच कहंदे ने सियाने भुखे रोणगे न्याणे। कुछ तू भी सोच विचार ला रूबी, तू भी सोच विचार ला रूबी, अकला नू हथ मार ला रूबी, तू भी सोच विचार ला रूबी, अकला नू हथ मार ला रूबी। तेरे केड़ा छत तो आने, तेरे केड़ा छत तो आने, तू भी दाने आईओ खाने, तेरे केड़ा छत तो आने, तू भी दाने आईओ खाने। अणख आबरू खोण नी देनी, अणख आबरू खोण नी देनी, धरत मोहताज

0: हो जमला जट मुंबई
1: के कवि ते रसोई नु बुरा ना बोलिए हम फड़ लिए तकड़ी ता पूरा तो लिए और जिन्ना चिर घरे ना ले आइए डोले नू के बैजा कर छड़िए बचोले नू के बैजा कर छड़िए बचोले नू।
2: सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना गुरजीत जीती ते तुसी सुन रहे हो दुआबा रेडियो, तुहाडी अपनी आवाज़।

0: वाह वाह,
1: ओ दे नाल रिश्ता है की, ओ दे नाल रिश्ता है की, जदों सोचा चुन्नी कोई करीरा विच अड़ी हुई याद आ, निकी जही गलों एवें लड़ी हुई याद आ, निकी जही गलों याद आ।
0: क्या बात, क्या बात है।
1: थोड़ी दास थोड़ी मैनु गल याद आ गई
0: जी।
1: एवी कई वारी हुंदा है, को कुदरती जुड़ गया तुसी, मैं कमेंट कीता सी, चलो बाई जी ने बहुत सोहना ओही गल बड़ा सोहना गाया ओह।
0: नहीं बा कमाल, बा कमाल जी, कोई शक नहीं
1: ओहदे करके सी ओह, बिलकुल। बाकी ना आ जेड़ी रही गल अपना, चलो आओ उजला भाई जी ओ।

कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, मेरे दिल से ना लो बदला जमाने भर की बातों का।

अपने वीरानाल माए रल के मैं रहंदी सी, तेरे कर बैठी माए दस तेनू की कहंदी सी, जुदा अपने तो कीता माए, जुदा अपने तो कीता माए, तू तो दुख भी ना फोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए कंधा दे ओले नी, तिया तन ने बेगाना माए, तिया तन ने बेगाना माए, सच कर दी।

जे डुब गई जे संतरी जांदे ओ डुब जाना अजे भी बादे करी जांदे। सूली उत्ते चढ़ के मैं तां जरकिया भी नहीं, सूली उत्ते चढ़ के मैं तां जरकिया भी नहीं, ओ अपने परछावे तों

जिंदवादियां चे डूब गई, जिंदवादियां चे डूब गई, जिस्म तरी जांदे ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। चुक लवां जे सिरे ओदा निकल जाए दम, चुक लवां जे सिरे ओदा निकल जाए दम, की करां जे आपे चे, की करां जे आपे चे।

जे डूब गई जे संतरी जांदे, ओ डूब जाना जे भी वादे करी जांदे। जोर ना मंगदे नहीं आपी भला देवे क्यों, जोर ना मंगदे नहीं आपी भला देवे क्यों। गली बाती जे सदा

ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे, भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे। ए कौन जो हक्कां लई, ए कौन जो हक्कां लई सूली चढ़ी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिंद वादिया चे डुब गई, जिंद वादिया चे डुब गई जे संतरी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिस चेहरे तेरा ऐ जिस्म लोहा हुंदा लाखा नहीं, जिस चेहरे तेरा ऐ जिस्म लोहा।

सुन तेरी हर जीत अच हार की परीत, सुन तेरी हर जीत अच हार की परीत, चोरा मेरे हड्डा नु नित खावे, हाय वे मेरे।

अज दा कोई पता नहीं, ना पता कोई कल दा ए, जदों समें दा चक्कर चलदा ए, मेरी मेरी करके।

के सुटते, प्यार वफा सब जड़ तो पुटते, पीछे कौड़ी पजदा फिरदा, पता न कोई पलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, लेखा लिखिया मेट न सकदा, हो लेखा लिखिया मेट न सकदा,

तेरे ते दा एहसान सारी जिंदगी मैं ढोआ, तेरे हासिया च हसा, तेरे रोने च रोआ।